इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं। तो भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। और ये शत प्रतिशत सही। और पते की बात लिखकर भेजी है हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं हम आपको इस मैसेज के लिए। और इसी के साथ अगला मैसेज जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल और प्रिया का, दिशानी और निमित आहूजा भी इसमें शामिल हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और गानों को एंजॉय कर रहे हैं और ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं, चलिए दुर्गाई से।

से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी ने भेजा है ये मैसेज। प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश भी हमें लिखकर भेजी है। चलिए अगला मैसेज। गिरना भी जीवन की एक कहानी है, हर ठोकर में छुपी नई रवानी है, रास्ते अगर कठिन हो तो क्या, मंजिल पाने की यही निशानी है। थक जाओ तो थोड़ा ठहर जाना, मगर अपने सपनों से मत मुड़ जाना। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह का आना तय होता है भाई। जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु ने ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से। और बहुत ही प्यारा मैसेज, बहुत ही अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। इसी के साथ अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, जो कि आया है दातार सिंह शेखावत जी ने भेजा है। संगीता कवर, तुषार सिंह, रिकी शेखावत हमें सुन रहे हैं लगातार और किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं, तो अगले गीत में आप शामिल हैं, यकीन कीजिए मेरा। अगला मैसेज जो अब शामिल होने जा रहा है वो आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने भेजा है मैसेज और पूछा है आप कैसे हैं जी। जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपका मैसेज पढ़कर और भी अच्छी हो गई हूँ। और चलिए फिर इसी बात पर अगला गाना सुन लेते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है ये भी और अगेन ये फरमाइश हमारे पास आई है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु जी की ओर से ही होली चौक, उत्तम नगर, दिल्ली से।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सब

अगर किसी के साथ बहुत दूर तक चलना है तो रास्ते की हर ठोकर का हिसाब मत रखना, कुछ गलतियों को बार बार माफ करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते मंजिल से नहीं साथ निभाने से खूबसूरत होते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे ही आपका खूबसूरत साथ हमें मिलता रहे ऐसी हम उम्मीद और दुआ करते हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने भेजा ये मैसेज हमें और हम कह रहे हैं थैंक यू सो मच। अगला मैसेज इसी के साथ चलिए अब शामिल कर लेते हैं। नितिन और मयंक शर्मा जी का कलानौर से आया है, नरेंद्र शर्मा और किरण शर्मा भी इसमें शामिल है। लिखा है कि कुछ रिश्तों को मुलाकात की जरूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। बिल्कुल सही बात है, और उम्मीद है कि आप आज मुझे याद कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं आ गई, हमारी मुलाकात भी हो गई और आपके साथ साथ मेरे चेहरे पर भी ढेर सारी मुस्कान है, क्योंकि आपके मैसेजेस और ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि है प्रोग्राम की रवायत, हमें फरमाइशें भी पूरी करनी है, तो चलिए एक अच्छा सा मैसेज पढ़ती हूँ और उन्हीं की फरमाइश पूरी करती हूँ जिन्होंने ये मैसेज भेजा है। लिखा है कि कौवा माने क्रो कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है, और ये मैसेज हमें भेजा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा जी ने चंडीगढ़ सिटी से। साथ ही पूजा खटक, बिमला देवी और शंभु दयाल खटक इस मैसेज में शामिल है जाखोद राजस्थान से, और ये रहा जनाब आपका फरमाइशी गाना।

और मुझे है खबर कि आगे क्या होने वाला है। भाई आपके मैसेजेस इतने सारे आए हुए हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करूंगी और क्या। देखिए प्रस्तुति तो आप बहुत अच्छी दे रही हैं, लेकिन ना हमारा ईमेल शामिल कर रही है ना व्हाट्सएप मैसेजेस, ये क्या बात हुई। ये नाराजगी मुझे दूर करनी है। धर्मेंद्र छीपा जी की ये नाराजगी है। कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार इनके साथ शामिल है। भोपालगढ़ राजस्थान से सीधा आया है ये मैसेज। और अगला मैसेज गौरी शंकर जी का नागलोई से आया है। लिखा है कि नाज बेटा एक बात तो है, बड़ों का आशीर्वाद दिखाई नहीं देता लेकिन काम जरूर करता है। बिल्कुल सही बात है जी, और आपका आशीर्वाद मुझ पर, एफएम गोल्ड के पूरे परिवार पर बना हुआ है, ऐसी मुझे आशा है। रेगुलर लिसनर है हमारे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ अगला मैसेज शामिल करते हैं। एक और नाराजगी मुझे नजर आई है अभी। सलीम अख्तर साहब की रेशमा बेगम अलीगढ़ से आया है मैसेज कि मैडम हमारा मैसेज शामिल क्यों नहीं हो रहा है, भाई क्या बात है। तो चलिए उम्मीद है आपकी भी नाराजगी मैंने दूर कर दी होगी। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज अब ईमेल्स का रुख कर लेते हैं। लिखा है कि किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया, ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका का ये मैसेज अगेन उत्तम नगर दिल्ली से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेम नाम से दो दो मैसेज आ रहे हैं, ये चीटिंग मत कीजिए जी। संदीप मक्कड़ जी का भी मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। ज्योति, मन्नत और भरत मक्कड़ इनके साथ शामिल हैं। धर्मवीर जी भी शामिल हैं, दिल्ली वाले हैं ये, पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर पंजाब से आया है मैसेज। अच्छा दिल्ली

काला पिंगा चौक एक जगह का नाम है शायद, जहाँ से इन्होंने ये मैसेज लिखा है और लिखा है कि मैडम हम भी हैं लाइन में, क्या आप हमें शामिल नहीं करेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है जी, जहाँ तक मेरी नजरें जाती हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सभी मैसेजेस को शामिल कर पाऊँ कर सकूँ, बस फिर भी इतने सारे मैसेजेस आप करते हैं कि कुछ तो छूट ही जाते हैं, उसके लिए माफी। और अगला मैसेज इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव भी इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। और एनी सॉन्ग, कोई भी गाना आप प्ले कर दीजिए, हम उसमें शामिल हैं, ये इन्होंने लिखकर भेजा है। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं ना, बहुत ही प्यारा गाना है और सिर्फ आप ही नहीं, हम सब उसमें शामिल हैं। बिट्टू भाटिया जी का भी मैसेज पढ़ लेते हैं। रीटा, रजत और मयंक भाटिया इनके साथ शामिल हैं, झज्जर हरियाणा से भेजा है मैसेज और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कृष्ण जटोलिया जी का मैसेज मैंने खोल लिया है, लिख रहे हैं कि नाज, नाम ही इतना खास है जैसे चांदनी में चांद का एहसास है, क्या बात है, मुस्कुरा दे तो महफिल खिल उठे, नाज की मुस्कान में कुछ ऐसी ही बात है। सच में आपके मैसेजेस पढ़ते हुए ना, खास तौर पे इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो लगातार मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी ही रहती है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत मैसेजेस जो आप भेजते हैं, पूरा क्रेडिट आपको है। अगला मैसेज भी एक नाराजगी से भरा है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना इसमें शामिल है, लिख रहे हैं कि हम भी रेगुलर ट्यून इन हैं, अभी तक नो रिप्लाई, कोई नाराजगी है क्या? एनी सॉन्ग में मेल पढ़ दीजिए। चलिए पढ़ दिया मैंने जैसा आपने कहा। और इसी के साथ अगला मैसेज अनिल मोहन जी का, ये भी किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आया है मैसेज, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक इनके साथ शामिल है। और देखिए घड़ी जो है ना, उसे मैं रोक नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, बहुत तेजी से वक्त बीत रहा है। अगली फरमाइश भी पूरी करनी है, जो कि आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए एक दो मैसेजेस जल्दी से वक्त चुरा लेती हूँ और पढ़ देती हूँ। एसपी गोयल जी का मैसेज है, लिखा है, सुरीली यादों का एक हंसी कारवा लाया हूँ, एफएम गोल्ड के मंच पर दिल का अरमान लाया हूँ, जो सीधे दिल को छू जाए वो पैगाम लाया हूँ, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम लाया हूँ। अच्छा, तो ये गीत सुनना चाहते हैं आप, क्या बात है। किशोर दा की आवाज का जादू फिर से जगा दीजिए, इस फरमाइशी तराने से महफिल सजा दीजिए, गुजारिश है मेरी इस नगमे को आज जरूर सुना दीजिए, रेडियो के सब दीवानों का दिल बहला दीजिए, माफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपका ये मैसेज पढ़ लिया होता ना, तो कसम से ये गाना आज जरूर प्ले होता, लेकिन अगली बार के लिए मैं इसको पेंडिंग रख रही हूँ, अगली बार ये फरमाइश जरूर मैं पूरी करूंगी। सतप्रकाश सनोठिया जी रोहिणी से ये मैसेज, और अब जल्दी से प्ले करती हूँ अगला गाना, जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने, दादा बाबू रोड गिरीडीह झारखंड से आई है ये फरमाइश। ठीक है, तो एंजॉय करते हैं ये गाना और अब आपसे मुलाकात होगी ठीक 11:10 पर, और प्रोग्राम कौन सा होगा ये आप जानते हैं, तस्वीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की बैठक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातो रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण ने पेंशन दायरे का विस्तार करने के लिए पेंशन सखियों

0: के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में पेंशन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। वे भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Canada have begun the fourth round of negotiations for the proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA, in New Delhi, as both sides seek to boost bilateral trade to $50 billion by 2030. The five-day talks, which began yesterday, will continue until September 18 and cover key areas including trade in goods and services, rules of origin and technical trade barriers, among others. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The Department of Rural Development, DORD, and the Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA, have signed a Memorandum of Understanding to expand pension coverage and strengthen social security among rural households through a dedicated cadre of pension sakhis. The Ministry of Rural Development said that the partnership will leverage the community institutional network of Deendayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission, including banking correspondent sakhis and other trained community resource persons, to raise awareness, facilitate enrollment, and provide pension-related support in remote areas. CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research, has adopted an initiative tool to convert research papers published in its journals into engaging and accessible short videos. The Science and Technology Ministry said that the institute has adopted Saral AI, an initiative of the Anusandhan National Research Foundation, aimed at wider dissemination of scientific knowledge. This initiative is aimed at making scientific research easier to discover, understand and share, particularly among students and the general public. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has also encouraged scientific institutions to adopt the technology. President Draupadi Murmu today extended greetings to the people of the country, especially the people of Orissa, on the occasion of the agriculture-based community festival Nuakhai. In a social media post, the president said that Nuakhai is not just a traditional festival, it is also a symbol of social and familial intimacy through community feasts and reunions with friends. National Engineers Day is being celebrated today to honor the birth anniversary of Bharat Ratna Mokshagundam Vishveswaraiya, one of India's greatest engineers. The day is celebrated every year on 15th September to remember Vishveswaraiya's contributions and honor the role of engineers in the nation's growth. Prime Minister Narendra Modi paid tributes to M. Vishveswaraiya on his birth anniversary.

नमस्कार, आदाब और स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने रेडियो स्टेशन एफएम गोल्ड पर, जिसे ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नाज। प्रोग्राम शुरू हो चुका है तस्वीर। दोस्तों, आज है तारीख 15 सितंबर, जो कि बड़ी खास है क्योंकि आज देश भर में मनाया जा रहा है नेशनल इंजीनियर्स डे। लेकिन आज एफएम गोल्ड पर हम इंसानी इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि कुदरत की उस शानदार इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिसे देखकर दांतों तले उंगली दब ही जाती है। तो बारिशों को देते हुए विदाई और ठंडक भरी गुलाबी हवाओं की दस्तक पर चलिए खोलते हैं दिल के दरवाजे और निकल पड़ते हैं साथ एक ऐसे सफर पर जहां खूबसूरत नजारे होंगे और साथ होगा कुछ सदाबहार तरानों का भी। किसी शायर ने कितना सच कहा है ना, ये जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, बस चलने का अंदाज आना चाहिए। और आज जिस तरफ हम चल रहे हैं वो है भारत के दक्षिण पूर्व में फैला एक नीलम जैसा मैजिकल आर्किपेलागो, माने खूबसूरत द्वीप समूह, और नाम है जिसका अंडमान और निकोबार। और वहां पहुंचकर जहां हम ठहरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस जगह का नाम है स्वराज द्वीप, एक ऐसी

जगह जहां आसमान और समंदर लगभग एक ही रंग में घुल जाते हैं। तो चलिए हम भी चले चलते हैं वहीं, यानी स्वराज दीप किशोर दा के साथ इस हसीन सफर को एंजॉय करते हुए।

वाह क्या बात है। ठीक ऐसी ही मस्ती भरी वाइब्स के साथ चलिए अब जानते हैं कि नीले समंदर के इस अजूबे यानी स्वराज द्वीप तक पहुंचना कैसे है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पहले लैंड कीजिएगा अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और वहां से स्वराज द्वीप पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कमाल है। पोर्ट ब्लेयर की फिनिक्स बे जेट्टी से आपको मिलेंगी कटमरां यानी हाई स्पीड क्रूज या फिर गवर्नमेंट फेरी भी।

समंदर की लहरों के बीच लगभग 1.5 से 2 घंटों का ये सफर इतना खूबसूरत होता है कि रास्ते में उछलती डॉल्फिन्स और पानी के ऊपर उड़ती फ्लाइंग फिशेस देखकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और ऐसे में अगर ये गाना आपके ईयरफोन्स में बज रहा हो तो यकीनन सोने पर सुहागा हो जाएगा।

1943 को पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराने की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए ऐसा किया गया था। असल में उस दौरान ये नेताजी का ही सुझाव था कि इस जगह का नाम शहीद द्वीप या फिर स्वराज द्वीप रखा जाए। और यहाँ कदम रखते ही सबसे पहली जगह जो आपके होश उड़ा देगी वो है राधा नगर बीच। टाइम मैगजीन इसे एशिया का सबसे खूबसूरत बीच घोषित कर चुकी है और इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। यहाँ की मखमली सफेद रेत, फिरोजी नीला पानी और किनारे पर खड़े ऊंचे ऊंचे महुआ के पेड़, सच में ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी मेहनत और हुनर के साथ कोई तस्वीर रची हो।

और लीजिए जनाब, लहरों से अटखेलियां करते हुए हमारी एंट्री हो चुकी है अंडमान निकोबार के खूबसूरत स्वराज द्वीप में। वैसे आपको बता दूं कि साल 2018 से पहले इस द्वीप को दुनिया हैवलॉक आइलैंड के नाम से जानती थी, लेकिन फिर 30 दिसंबर 2018 को इस जगह का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर साल

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तस्वीर सुन रहे हैं आप विद आरजे नाज, जहां सैर हो रही है आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप की। राधानगर बीच के शांत नजारों के बाद अगर आपका दिल थोड़े एडवेंचर के लिए धड़क रहा हो तो सीधा रुख कीजिएगा एलिफेंट बीच का। यहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो बोट से जाइए या फिर हरे भरे जंगलों के बीच से 2 किलोमीटर का शानदार ट्रैकिंग ट्रैक चुनिए। एलिफेंट बीच बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स का हब है और सबसे बड़ी बात, यहां का अंडर वाटर वर्ल्ड। अगर आप स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करते हैं तो पानी के अंदर रंग बिरंगे कोरल रीफ, क्लाउन फिशेस और समुद्री कछुए यहां आपका वेलकम करेंगे।

और हाँ, जिन्हें तैरना नहीं आता वो यहाँ पर सी वॉक कर सकते हैं, यानी समंदर की तलहटी पर पैदल चलकर जलपरी वाली फीलिंग आप आराम से ले सकते हैं।

नीले पानी की बात हो और साथी के तौर पर किशोर दा की आवाज हो तो मजा दोगुना नहीं कई हजार गुना बढ़ जाता है, है ना? अच्छा, स्वराज द्वीप की एक और खासियत है जो मुझे अब आपको बतानी है, और वो है यहाँ का काला पत्थर बीच। जैसा नाम ठीक वैसा ही इस जगह का काम है। इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ सफेद रेत के साथ साथ काले रंग की बड़ी बड़ी चट्टानें भी फैली हुई हैं, जो नीले पानी के साथ एक अमेजिंग सा कंट्रास्ट बनाती हैं। सुबह सुबह यहाँ से सनराइज देखना किसी थेरेपी से कम नहीं है।

भीड़भाड़ से दूर अगर आप शांति से बैठकर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या लहरों के बीच मीठा मीठा संगीत सुनना चाहते हैं, तो काला पत्थर बीच आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है।

और चलिए घूमना फिरना जब काफी हो गया है तो अब बात थोड़ी बहुत शॉपिंग की भी कर लेते हैं, जहां स्वराज द्वीप के लोकल मार्केट से आप खरीद सकते हैं समंदर के नायाब तोहफे। जी हाँ, सीप और शंख से बने खूबसूरत शोपीस, नारियल के खोल से बने कप और हैंडीक्राफ्ट्स, और अंडमान की खास पडॉक वुड यानी लकड़ी से बनी खूबसूरत कलाकृतियां। ये सब आपके घर और आपकी जिंदगी में चार चांद

ठुकरा देंगे। और हाँ, यहाँ मिलने वाली पर्ल ज्वेलरी तो एकदम लाजवाब होती है, तो लेडीज डोंट मिस दैट एट एनी कंडीशन।

और जनाब, अब वक्त हो चला है सबसे जरूरी काम का, यानी पेट पूजा का। स्वराज द्वीप आए हैं और यहाँ का सी फूड अगर आप नहीं चख पाए किसी भी वजह से, तो समझिए ट्रिप अधूरी रह गई।

आपकी नारियल के दूध और ताजे मसालों में बनी कोकोनट प्रॉन्स करी, तंदूरी फिश और ग्रिल्ड क्रैब यहाँ की खासियतें हैं, जिनका जायका आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। और हमारे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए ताजा नारियल पानी, रसीले अनानास और बीच साइड शेक्स के साथ साथ साउथ इंडियन, बंगाली और नॉर्थ इंडिया से इंस्पायर्ड डिशेस हर कहीं अवेलेबल हैं यहाँ यानी स्वराज द्वीप पर।

और अब आप सुनिए मेरी यानी नाज की बात और जानिए स्वराज द्वीप की सबसे बड़ी मैजिकल मिस्ट्री यानी जादुई रहस्य के बारे में। अच्छा, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में समंदर के पानी को सितारों की तरह चमकते देखा है? अगर नहीं तो आपकी डेस्टिनेशन है आज एकदम सही, क्योंकि स्वराज द्वीप के मैंग्रोव जंगलों में रात के वक्त नाइट काइकिंग होती है, जहां पानी में मौजूद बायोलुमिनेंस यानी सूक्ष्म जीव जब छपछपाते हैं तो कुछ नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हैं।

तो ऐसे में जैसे ही आप पानी पर चप्पू चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप पानी में नहीं बल्कि तारों से भरे नीले आसमान में नाव चला रहे हैं। वाकई ये नजारा आप चाहे भी तो भी कभी भुला नहीं पाएंगे।

तो तस्वीर में आज हमने मिलकर दीदार किया स्वराज द्वीप के उस पारदर्शी नीले संसार का, जहां की लहरें हर पल एक नई दास्तान सुनाती हैं। जाते जाते बस इतना सा मैसेज हम सब के लिए कि जब भी इस खूबसूरत द्वीप पर जाएं, तो कुदरत की इस अनमोल धरोहर को साफ सुथरा ही रहने दें। प्लास्टिक या कचरा जहां फेंकना चाहिए सिर्फ वहीं डालें, और वापसी में साथ लेते जाएं ढेर सारी यादों का कारवां।

0: फिर मिलोगे कभी इस बार।
1: और इसी के साथ अब लेनी होगी आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर किसी नए सफर पर फिर होंगे हम साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। कल से शुरू हुई 5 दिन की ये वार्ता 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया

रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक की शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और दोपहर के सत्र में वो गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근.
1: नमस्कार। समय की सुई जब आगे बढ़ती है तो पीछे छूट जाती हैं कई यादें और साथ आ जाती हैं कई नई बातें। ऐसी ही कुछ पुरानी यादों और नई बातों को लेकर आज हम फिर आपके बीच हाजिर हुए हैं कार्यक्रम घर आंगन में। मैं हूं श्रुति पुरी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर यह प्रसारण 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं वे ये कार्यक्रम AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया कहा करते थे कि काम ही पूजा है। ये छोटी सी पंक्ति अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। उनका ये भी मानना था कि धन नहीं बल्कि चरित्र की ऊंचाई ही असली बड़प्पन है। और आज की तारीख भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा लिए हुए है। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1959 में आज ही के दिन भारत में दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ था और कुछ सालों बाद नियमित प्रसारण आरंभ हो गया। सोचिए उस दौर को जब घर में टेलीविजन होना किसी उत्सव से कम नहीं था। छत पे लगा एंटीना मोहल्ले की शान हुआ करता था और शाम होते ही पड़ोसी टीवी देखने इकट्ठा हो जाया करते थे। एक छोटे से डिब्बे ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने भीतर समेट लिया था। और अब समय है आज के प्रश्न का। जैसा कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, बुखार, खांसी, वायरल और डेंगू जैसी बीमारियां मौसम बदलने के साथ पनप रही हैं। ऐसे में स्वच्छता अपने घर में, परिवेश में, यानी हर स्तर पर जरूरी है। तो हमारा आज का सवाल है आपसे ये कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपका क्या कर्तव्य है और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमें अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com पर तुरंत लिख भेजिए। और आनंद लीजिए अब इस गीत का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रॉकी में। श्रोताओं, आज का दिन राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती है। आपका जन्म साल 1861 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत के महान इंजीनियरों में गिना जाता है। उनका नाम आते ही मन में सबसे पहले कृष्णराज सागर बांध और मैसूर की जल प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का ख्याल आता है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। और आज का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। हर नागरिक की आवाज मायने रखती है और लोकतंत्र की मजबूती जन भागीदारी से ही बनती है। और साहित्य की दुनिया के लिए आज का दिन बेहद खास है। बांग्ला के महान उपन्यासकार शरणचंद्र चट्टोपाध्याय

उपाध्याय की आज जयंती है। उन्होंने देवदास और परिणीता जैसी रचनाएं दी जो आज भी पाठकों के दिल में बसती हैं, और हिंदी साहित्य जगत के जाने माने डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म भी आज ही के दिन साल 1905 में हुआ था। वे हिंदी नाट्य साहित्य के उन स्तंभों में गिने जाते हैं जिनकी एकांकी विधा पूरी दुनिया में एक पहचान बन गई। श्रोताओं, आज ऋषि पंचमी भी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला ये व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित

विरासत फिल्म में अभी आप कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण को सुन रहे थे। श्रोताओं, गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में एक जैसी है और गणपति बाप्पा घर घर में विराजित हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है, पर आपको पता है कि हर राज्य में गणपति बाप्पा को मनाने का अपना ही अंदाज है। महाराष्ट्र में ये उत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। घर घर और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति स्थापना, ढोल ताशों की गूंज और भावभीनी विदाई के साथ। गोवा में इसे चवथ कहते हैं। वहां की खासियत है कि दूर रह रहे परवारी जन भी विसर्जन से पहले घर लौट आते हैं। कर्नाटका में पहले गौरी पूजा होती है और फिर उसके बाद गणपति का स्वागत किया जाता है और साथ में कुडुबू जैसे पारंपरिक पकवानों का भोग भी लगता है। हैदराबाद के खैरताबाद गणेश अपनी विशाल प्रतिमा के लिए देश भर में मशहूर हैं। ये परंपरा एक छोटी सी 1 फुट की प्रतिमा से शुरू हुई थी, जो आज 60 फुट से भी ऊंची प्रतिमा तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में इसे विनायक चतुर्थी या पल्लैयार चतुर्थी कहते हैं और कोझू कट्टई का भोग गणपति को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। कहीं ये 10 दिन का भव्य उत्सव होता है तो कहीं 12 दिन की सादगी भरी पूजा। पर बप्पा के लिए प्रेम हर जगह उतना ही गहरा है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भाषा अलग, रीति अलग, पर आस्था एक। और जब विदाई की घड़ी आती है तो हर प्रदेश में एक ही पुकार सुनाई देती है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।

शंकर महादेवन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म विरुद्ध में। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं और अब हम उनको शामिल भी कर रहे हैं। सबसे पहला मेल हमारे पास आया है नवीन भाटिया जी का, मोती नगर दिल्ली से। ये लिखते हैं कि कचरे वाली गाड़ी आती

है डेली, उसी में कचरा डालते हैं और रोड पर लेकर नहीं जाते हैं। हमें चरणदास जी लिख रहे हैं, राजू अग्रवाल, केशव और प्रियांशी, ये सभी चौधरीवास हरियाणा से लिख रहे हैं कि नमस्कार, आपके नमस्कार कहते ही आवाज पहचान गया था। और साथ ही ये लिखते हैं कि हमारे घर में आगे एक बहुत बड़ा सा चौक है, हम रोजाना 30 मिनट वहां पर सफाई करके आते हैं। तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप राजू अग्रवाल जी। अगर आप अपने घर के आगे के चौक की भी सफाई करते हैं तो आप अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखते हैं। और अफरोज शेख लिख रहे हैं कि घर का कचरा इकट्ठा ना होने दें, कपड़ों को भी इकट्ठा करके ना रखें क्योंकि इसमें भी मच्छर छुप जाते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मैले कपड़े होते हैं या धुले हुए कपड़े भी अगर बाहर पड़े हों तो उसमें भी मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये योगांशु कुमार जी लिखते हैं, योगांशु कौशिक जी, तो ये लिखते हैं, नमस्कार मैम, मैं आपका कार्यक्रम सुनता हूँ और मेरे पिताजी 1 सितंबर 2001 से जब से रिटायर्ड हुए तब से FM गोल्ड सुनते हैं। और आगे लिख रहे हैं कि मैं स्वच्छता रखने के लिए कभी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं डालता हूँ, उसे डस्टबिन में ही डालता हूँ और बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। और आज जब मैं अपने गाँव जाता हूँ तो वहाँ पर भी जाकर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखता हूँ, लोगों को भी ये बताता हूँ कि साफ सफाई रखनी है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप योगांशु जी, हम सभी को इस मुतालिक ध्यान तो रखना ही चाहिए। अगला मेल हम ले रहे हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, सदा खाओ स्वस्थ हो जाओ, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, मच्छर भगाओ बीमारी भगाओ। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। देखिए आपने इस अंदाज में उसको तुकबंदी में लिखा है कि कितनी भी हम कोशिश करें हमें मच्छर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं, लेकिन उनको भगाना हमारा कर्तव्य है। और इन्होंने आगे लिखा है कि न रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चले मच्छर की मनमानी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत अच्छा लिखा है आपने सुदर्शन मुखी जी, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और हमें एक डॉक्टर राजेश्वर राव जी का भी मेल आया है और उन्होंने लिखा है कि जो गार्बेज है वो लोगों के द्वारा ही जनरेट किया जाता है और ये कॉरपोरेशन तो इसको हमेशा जो है समेटने का ही काम करती है। तो माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को लेकर इन्होंने जोर दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो सेग्रीगेशन है हमें करना चाहिए गीले कूड़े का और सूखे कूड़े का, स्टोरेज नहीं करनी चाहिए, टाइमली उसका एक सही जगह पर उसका निस्तारण भी हमें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने डॉक्टर राजेश्वर राव जी, आप भी हमें नियमित मेल करते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। गौरी शंकर जी का मेल हमें आया है और इन्होंने लिखा है, राम राम बेटा, इस मौसम में मच्छरों की भरमार हो जाती है जिससे बीमारियां फैलती हैं, तो घर में पानी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और बुखार में कई दिनों तक नहीं तो पीछा नहीं छोड़ता और ध्यान रखना जरूरी है। और ये गौरी शंकर जी नांगलोई से हमें लिख रहे थे। श्रोताओं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही हैं और बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को भी ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए ना, अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आपको बचपन में ले चलूँ क्योंकि बचपन में जो हम रेल का सफ़र करते थे ना और उसमें अगर सीटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी तो ऐसा लगता था कुछ अधूरा है। बचपन में स्टेशन पर खड़े होकर हम अक्सर उस सीटी की आवाज़ का इंतज़ार किया करते थे, मानो किसी जादुई पल की शुरुआत हो रही हो। और रेल की सीटी सुनते ही जैसे मन में एक अलग सा उत्साह भर जाता था। पर क्या आपको पता है कि सीटी सिर्फ इशारा भर नहीं बल्कि एक पूरी भाषा है। भारतीय रेल में हर सीटी का अपना एक तय संकेत कोड होता है। अगर चालक एक छोटी सीटी बजाता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी और इंजन की मदद की जरूरत नहीं है, और अगर वो एक छोटी और एक लंबी सीटी बजाए तो इसका अर्थ है कि उसे पीछे लगे इंजन से सहायता चाहिए।

जब ट्रेन खड़ी हो और चालक दो छोटी सीटी बजाए तो इसका मतलब है कि वो गार्ड से ट्रेन चलाने की अनुमति मांग रहा है। लगातार लंबी सीटी का मतलब है कि ट्रेन किसी स्टेशन को बिना रुके ही पार कर रही है ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग सतर्क हो जाएं। कुछ खास मौकों पर रुक रुक कर बजने वाली सीटी ये संकेत देती है कि आगे रास्ता साफ नहीं है या पटरी पर कोई रुकावट है। और अगर कभी कोई आपात स्थिति बने, जैसे किसी यात्री ने चेन खींच दी है, तो उसका भी अपना अलग सीटी संकेत होता है। यानी जो सीटी हमें बचपन में सिर्फ एक रोमांचक आवाज लगती थी, वो असल में चालक और गार्ड के बीच में एक पूरा संवाद है। रेल की पटरियों के किनारे लगे जो पीले बोर्ड होते हैं ना, उन पर जो W का निशान भी होता है, वो भी चालक को यही याद दिलाता है कि आगे सीटी बजानी है। वाकई ये जानकारी दिलचस्प है ना। अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर खड़े होकर ये सीटी सुनेंगे तो शायद उसका मतलब समझने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। दोस्त फिल्म में अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, छोटे बच्चों की दुनिया बड़ी अनोखी होती है। आपको बताएं कि वे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जो बड़े लोग बोलकर भी नहीं बता पाते, शब्दों में भी नहीं कह पाते। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि उनके भीतर पनप रही इस कोमल समझ को सही दिशा दें, उन्हें सहानुभूति और संवेदनशीलता के रूप में पल्लवित होने दें। आज के दौर में बच्चों की परवरिश की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कहीं संवेदन

सहनशीलता पीछे न छूट जाए। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है घर का माहौल। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर घर में बड़े एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से यही सीखता है। बच्चों को कहानियां सुनाना भी सहानुभूति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। जब बच्चा किसी कहानी के पात्र के सुख दुख से जुड़ता है तो वो दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। इसके अलावा पालतू जानवरों की देखभाल या पौधों को पानी देने जैसी छोटी जिम्मेदारियां भी बच्चों में देखभाल का भाव जगाती हैं। बच्चों से ये पूछना भी जरूरी है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और अगर वे किसी दोस्त की तकलीफ की बात करें तो उन्हें ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस दोस्त की जगह पर अगर तुम होते तो कैसा महसूस करते। इससे बच्चों में दूसरों की स्थिति को समझने की क्षमता विकसित होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों की भावनाओं को कभी छोटा या नजरअंदाज न किया जाए। जब बच्चों को ये भरोसा होता है कि उनकी भावनाओं को समझा जाता है तभी वो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए भी खुला रहता है। सच में सहानुभूति कोई पाठ्यक्रम नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों से सीखी जाती है, और यही छोटे पल आगे चलकर एक संवेदनशील समाज की नींव बनते हैं।

आशा भोसले और गीता दत्त को अभी आप फिल्म सुजाता में सुन रहे थे। दोस्तों, आजकल तो हर किसी की कलाई पर या जेब में मोबाइल फोन में समय दिख जाता है और एक पल में पता चल जाता है कि घड़ी में कितने बजे हैं। पर जरा सोचिए उस दौर के बारे में।

जब ना कलाई पर घड़ी होती थी न जेब में मोबाइल फोन, तब समय का हिसाब रखना अपने आप में कला हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग सूरज की परछाई देखकर समय का अंदाजा लगा देते थे। धूप घड़ी यानी सन डायल का इस्तेमाल तो प्राचीन भारत में भी होता था। इसके अलावा गांवों में मुर्गे की बांग होने से सुबह का पता चलता था। समय के साथ इंसान ने इस अनुमान को यंत्रों में बदलना शुरू किया। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास पहली यांत्रिक घड़ी बननी शुरू हुई, जो साल 1656 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूनसेंग ने पेंडुलम वाली घड़ी का आविष्कार किया, जो अपने समय की सबसे सटीक टाइम कीपिंग डिवाइस मानी जाती थी। यहीं से घड़ी के आधुनिक सफर की नींव पड़ी और फिर आया दीवार घड़ी या टेबल घड़ी का दौर। पेंडुलम वाली घड़ियां हर घर की शान हुआ करती थी। उनकी टिक टिक की आवाज मानो घर में जीवंत होने का प्रमाण होती थी। हर घंटे बजने वाला घंटा पूरे मोहल्ले को यह याद दिलाता था कि समय क्या हुआ है। कलाई घड़ी का चलन आने के बाद तो ये एक स्टेटस सिंबल बन गई। शादी में दूल्हे को घड़ी देना एक परंपरा बन गई थी और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पहली घड़ी मिलना किसी बड़े उपहार से कम नहीं होता था। महापुरुषों के जीवन में भी घड़ी का अपना ही अलग महत्व रहा है। आज के दौर में घड़ी का रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बताती है, बल्कि दिल की धड़कन नापती है, कदमों को गिनती है, फोन के संदेश तक दिखा देती है। फिर भी उन पुरानी घड़ियों के टिक टिक में जो सुकून था ना, वो आज भी बहुतों के मन में बसा हुआ है। ठीक कह रही हूँ ना? अपनी घड़ी देखिए और आंकिए वो किस जमाने की घड़ी है।

श्रोताओं, आज का ये सफर सच में बहुत रंगों से भरा रहा। बीता हुआ हर पल एक नई कहानी छोड़ जाता है और हर आवाज अपने भीतर कोई ना कोई संदेश समेटे रहती है। बस जरूरत होती है उसे सुनने, उसे महसूस करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सफर को यहीं विराम देते हैं और आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम घर आंगन। मैं थी श्रुति पुरी, इजाजत दीजिए। जल्द ही नई दोपहर, नई बात, एक नए विषय और एक नई सोच के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए हमारा ये गीत अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म त्रिदेव से।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पुनर्उपयोग, मरम्मत और संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को समकालीन नीतियों में आधुनिक रूप दिया है। उन्होंने ये बात गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व चक्रीय

0: व्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा उद्योगों के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में DRDO उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अभूतपूर्व हैं।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, IDEX हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रूपये तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेनदेन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defence sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the National Capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
1: Abhi pichle kuch varson mein humne defence sector mein jo reforms dekhe hain,
3: the reforms witnessed

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:11:02 और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का जिक्र होगा आज कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। कहते हैं कि फिल्म के पोस्टर पर उनका नाम देखकर ही दर्शक टिकट खरीद लिया करते थे। मनोरंजन से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म बनाने के लिए उन्हें जाना जाता रहा। मसाला फिल्में बनाने के पीछे उनकी यही सोच रही कि भाई एक आम दर्शक जो दिन भर कठिन परिश्रम करने वाला है वो सिनेमा में सुकून तलाशने के लिए आता है। खूबसूरत हीरोइनें, बलशाली हीरो, मधुर गाने, थोड़ा सा रोमांस और जोरदार फाइट सीन, बस इन्हीं सब चीजों को देखकर वो अपनी थकान भूल जाते हैं। ढेर सारे नामी स्टार्स को लेकर उनकी फिल्मों में एक साथ जो हुआ करते थे ना, एक साथ इतने स्टार्स को लेने का बजट और साहस उन्हीं में था। साहब राजकुमार कोहली साहब, लेजेंड फिल्म मेकर। आकाशवाणी दिल्ली पर इस तरह की उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। सुनते रहे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली की बातें इस वक्त हो रही है। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय हो रहा है यहाँ पर आकाशवाणी गोल्ड पर। राजकुमार कोहली को बड़ी सफलता मिली फिल्म नागिन से। 1976 की ये फिल्म है। सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, मुमताज, रीना रॉय, रेखा, विनोद मेहरा, योगिता बाली, कबीर बेदी जैसे तमाम बड़े सितारे इस फिल्म में मौजूद रहे। फिल्म सुपरहिट रही और मल्टी स्टारर फिल्मों का एक तरह से चलन शुरू हो गया। राजकुमार कोहली के हाथ भी हिट फिल्मों का फॉर्मूला लग गया। ढेर सारे स्टार्स लो फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना, एक आसान सी फॉर्मुलेटिक आसान सी कहानी और कुछ फाइट सीन, कुछ मेलेडियस सॉन्ग, बस एक हिट फिल्म बना डालो। लेकिन ये जो सारा काम था ना, आसान नहीं था, और ये जो काम था बस राजकुमार कोहली ही कर पाए। और एक और ही बहुत ही बेहतरीन सा गाना, अगर आपने फिल्म नागिन देखी है तो जरूर आपको ये फिल्म और इसका गीत संगीत तो बेहद पसंद आया होगा।

जी हाँ, नागिन फिल्म का ये गीत आपको भी जरूर याद आ गया होगा, और बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, इसका पूरा का पूरा, इस फिल्म की कहानी, और बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी कि नजर हटाए नहीं हटती, और गाने, डायलॉग्स, सचमुच सब कुछ अपने, जैसे बोलते हैं, आगोश में लपेट लेते हैं। और नागिन के बाद इनकी आई जानी दुश्मन 1979 की फिल्म, इसी तरह बदले की आग 82 की फिल्म, नौकर बीवी का 1983 की ये फिल्म रही, राज तिलक 1984 की फिल्म, 1987 की फिल्म इंसानियत के दुश्मन, 1988 में इनकी आई साजिश 20 साल बाद जैसी सफल फिल्में राजकुमार कोहली साहब ने बनाई। इनकी फिल्मों में कमल हासन, मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, डिंपल कपाड़िया जैसे सितारे भी नजर आए। राजकुमार कोहली क्योंकि बड़ा नाम थे, बड़े बड़े स्टार्स इनके साथ जो होते हैं ना, काम करने के इच्छुक रहे, और उनकी फिल्मों को हिट फिल्मों की गारंटी माना जाता था।

0: मेकर राजकुमार कोहली का इस वक्त जिक्र हो रहा है आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। 1963 में ये मुंबईया फिल्मों की तरफ इन्होंने रुख कर लिया अपना। उससे पहले पंजाबी फिल्मों सीन की शुरुआत हुई थी। प्रेमनाथ और निशी को लेकर इन्होंने पहली फिल्म बनाई और उसके बाद दारा सिंह और निशी को लेकर लुटेरा फिल्म 1965 में बनाई। प्रेम चोपड़ा को भी इन्होंने पहली बार हीरो के रूप में पर्दे पर उतारा। बड़े कैनवास और सेटअप वाली कहानियों को पर्दे पर भव्य ढंग से उतारने में वो सक्षम साबित हुए। मल्टी स्टारर फिल्मों को बिना लेट लतीफी के अपने निर्धारित सही समय पर बनाकर दिखाया राजकुमार कोहली साहब ने, ये उनका गजब का प्रबंधन रहा।
1: हमले की तैयारी करो,
2: जल्दी करो।

दिग्गज फिल्ममेकर राजकुमार कोहली कोरा और काला गोरा और काला ये उनकी पहली हिंदी हिट मूवी रही जिसमें राजेंद्र कुमार हेमा मालिनी रेखा मुख्य भूमिकाओं में दिखे। राजेंद्र कुमार फिल्म में डबल रोल में दिखे और ये वही साल रहा जब हेमा जी की डबल रोल वाली फिल्म सीता और गीता भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

उन दिनों फिल्म गोरा और काला के वक्त राजेंद्र कुमार टॉप स्टार थे और राजकुमार कोहली ने 10 साल बाद पंजाबी और कम बजट की फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद अपनी पहली बड़ी फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखा। इसके बाद उन्होंने नागिन फिल्म का प्लॉट तैयार किया। रीना रॉय को फिल्म में नागिन की भूमिका के तौर पर रखा गया और रीना रॉय के पूरे करियर में उन्हें इस किरदार से जो शोहरत मिली ना, वो उनके किसी और किरदार के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। इस फिल्म की मिली कामयाबी का सहरा तो सभी कलाकारों के नाम रहा ही, साथ ही राजकुमार कोहली भी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से छा गए थे।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल 100.1 और बातें हम कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म मेकर राजकुमार कोहली साहब की। फिल्म नागिन का हमने जिक्र किया और इसके बाद उनकी फिल्म जानी दुश्मन भी दर्शकों के बीच काफी हिट साबित रही। एक अच्छी हॉरर मूवी के तौर पर आज भी ये फिल्म लोगों के जहन में रहती है और इसका एक गीत चलो रे डोली उठाओ कहा फिल्म की सिचुएशन के अनुसार तो बहुत पसंद किया ही गया, लेकिन इस फिल्म के इस गीत को बाद में भी शादी ब्याहों के माहौल में

वो पसंद किया जाता रहा। और इसके अलावा भी फिल्म के जो बाकी गीत थे ना, वो भी बहुत जैसे सराहे गए, पसंद किए गए और लोगों के जहन में आज तक बसे हुए हैं। जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार कोहली साहब की एक सबसे बड़ी खासियत क्या रही पता है? उनकी एक खासियत थी कि फिल्म जो इंडस्ट्री थी, फिल्मी दुनिया में उनकी गहरी पैठ। दर्जनों बड़े अभिनेता उन्हें एक साथ डेट्स दिया करते थे और कई अभिनेताओं के साथ तो उनके घरेलू रिश्ते भी बन गए थे। इसके पीछे रहा उनका अच्छा मिलनसार मधुर स्वभाव। कहते हैं कि फिल्म पत्रकारों के बीच ये किस्सा भी मशहूर था कि राजकुमार कोहली खुद बैग लेकर कलाकारों के घर जाते थे और अपने हाथ से उन्हें तय फीस दिया करते थे। इससे उन्हें एकदम जैसे बोलते ना खरा कारोबारी का किताब मिला हुआ था।

14 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। राजकुमार कोहली साहब पिता भी इनके फिल्म निर्माता रहे। बचपन से इन्हें भी फिल्मों का शौक रहा। पंजाबी फिल्म अभिनेत्री निशी से इनकी शादी हुई, जिनसे राजकुमार कोहली की मुलाकात 1963 की फिल्म पिंड दी कुड़ी के सेट पर हुई थी। जाने माने निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। मल्टी स्टारर और हॉरर फिल्मों का नया दौर इन्होंने शुरू किया। सेट पर उनके किस्से उनकी मेहनत और जुनून को दर्शाते थे। वो बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे रहे जिनकी चमक आज भी फिल्म प्रेमियों के दिलों में बरकरार है।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1,520 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय आज सन 2026 सितंबर महीने की 15 तारीख व दिन है मंगलवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत समूह मोनपम्बद कोशक श्री संगीत टशी तकनीकी अभियंता श्री तानिंग तको और लाम सिंह ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गियारी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छोटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसे पहलों

0: को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रीयता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रीयता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास पारिस्थिति समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में

0: उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब एक महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉ एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंध्र

0: कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
2: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना भक्ति संगीत के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अन्य गंजन जामों और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोतम अभी आप सुन रहे थे अनिगिन नमो और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे जुबिन गर्ग और नीलिमा खातून की आवाज में चंद असमिया गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुबिन गर्ग और नीलिमा खातून की आवाज में चंद असमिया गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं साइंस कक्षा की छात्रा कर्मा छुटन से महिला सुरक्षा और जागरूकता विषय पर चंद शब्द।
1: नारी मान है, सम्मान है, नारी हमारी संस्कृति की शान है। नारी मान है, सम्मान है, नारी हमारी संस्कृति की शान है। इसे चाहिए आजादी और हक, इसे चाहिए आजादी और हक, ना कि किसी दया का उपहार। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कर्मा छुटन, पीएम श्री जिनवित तवांग, कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्र। आज इस कार्यक्रम में मेरे वार्तालाप का विषय महिला सुरक्षा और जागरूकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, समाज की आधी आबादी महिलाओं की है और हमारे तवांग में आधे से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। फिर भी उन्हें घर, स्कूल, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। महिला सुरक्षा आज के समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यक है। महिला सुरक्षा का अर्थ है महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। महिला सुरक्षा न केवल महिलाओं की बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश तीनों की जिम्मेदारी बनती है। परिवार से लेकर राष्ट्र के विकास तक महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद आज भी महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई गई है, जैसे निर्भया एक्ट।

0: इस कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त सजा दी जाती है। महिला हेल्पलाइन 181-1091। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं इस नंबर पर कॉल करके तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। साइबर क्राइम कानून। ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी या गलत तस्वीरों के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बेटियों के लिए शिक्षा व सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं। केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ समाज में जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। महिलाओं को अपने अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही लड़कों और पुरुषों को भी महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव सिखाना चाहिए। जब महिला सुरक्षित होगी तभी समाज और देश सही मायने में प्रगति कर पाएगा। महिला सुरक्षा महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा न केवल एक कानून या अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोच और व्यवहार से जुड़ा विषय है। महिला सुरक्षित होगी तभी समाज सुरक्षित होगा। शिक्षा का दीप जलाओ, बेटियों को भी सही सीख सिखाओ, नर नारी बराबर है इस बात को जग में फैलाओ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग की 11वीं साइंस कक्षा की छात्रा कर्मा चुटन से महिला सुरक्षा और जागरूकता विषय पर जन शब्द। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म कश्मीर की कली से शब्द रचना है एस एच बिहारी के, वह संगीत है ओपी नायर का।

अभी आपने सुना फिल्म बिल्लू से गीत सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर की आवाज में। गीतकार थे गुलजार व संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे जावेद अख्तर द्वारा शब्दबद्ध फिल्म वेकअप सेठ से। कविता सेठ की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान और लॉय ने।

0: फिल्म वेक अप सिड के से गीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरे। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी से। शब्द रचना है कुणाल वर्मा की व संगीत है प्रसाद एस का।

अभी आपने सुना फिल्म दो पत्ती से गीत, परंपरा टंडन की आवाज में गीतकार थे कौशल मुनीर व संगीता सचेत परंपरा का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडीज से। प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राम संपत ने।

0: अभी आपने सुना मिस्टर एंड मिसेस माही से गीत जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाज में, गीतकार थे कौसर मुनीर व संगीता तनिष्क बागची का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 rupees, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशन ओपन है 1 August से 30।

0: 1 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म रुसलान से रितु रिबा की आवाज में। शब्द रचना है राणा सोतल की व संगीत है रजत नागपाल का।

अभी आपने सुना फिल्म योद्धा से गीत विशाल मिश्रा की आवाज में, गीतकार थे कौशल किशोर और विशाल मिश्रा व संगीत था विशाल मिश्रा का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कुमार द्वारा शब्द फिल्म फाइटर से बी पराग, विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म श्रीकांत से गीत जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में, गीतकार थे श्लोक लाल व संगीत था तनिष्क बागची का। कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म हसीन दिलरुबा से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में। शब्द रचना है क्षितिज पटवर्धन के, वो संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: टी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कलाकार निषाद खान से सितार वादन। राग है चांदनी कल्याण व तबले पर संगत दिया है शाफत अहमद खान ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: फिल्म हसीन दिलरुबा के गीत के साथ कार्यक्रम गीतमंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से वेव्स

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत कलाकार निषाद खान से सितार वादन। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है, सितारागढ़ में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: इस अवसर पर कॉलेज के 124 विद्यार्थियों को और 20 संकाय सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभाग के पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए विभाग के गौरव नाम से विशेष अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें सम्मानित होने वाले में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हिंदी कार्यक्रम प्रस्तोता एवं उद्घोषक श्री गर्द अत एवं श्री गामले कामदुक तथा फ्रीडम न्यूज से जुड़े स्वतंत्र हिंदी पत्रकार श्री किरण तालुकदार शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर आगामी सेवा संकल्प उत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। सेवा संकल्प उत्सव का आयोजन आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नातुंग ने कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और विभागों से सामने आ रहे नवाचारपूर्ण विचारों और व्यवहारिक समाधानों की पहचान करना है। उन्होंने कहा है कि इस पहल के तहत प्रभावशाली नवाचारों को आम जनता तक पहुंचाने, युवा नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और ऐसे समाधानों को सामने लाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए लाभ के लिए पायलट आधार पर लागू कर बड़े स्तर पर विस्तार किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तिराप जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से खोंसा में नो योर राइट्स प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड विषय पर 2 दिवसीय बाल अधिकार जागरूकता एवं बाल कल्याण आंकलन अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तिराप जिला उपायुक्त मदनलोम तौसिक ने कहा है कि जागरूकता और समय रहते संवेदनशील बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उन बातों की जानकारी देनी चाहिए कि असुरक्षित परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि वे ऐसी परिस्थितियों को पहचाने और समय पर उचित प्रतिक्रिया दे सके। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा में माता पिता पहली सुरक्षा पंक्ति है, जबकि संस्थानों को भी बाल अधिकारों की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY पर 3 दिवसीय सर्कल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्वालिटी कंट्रोल एंड हैंड्स ऑन फील्ड ट्रेनिंग विषय के साथ अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के यूपिया स्थित पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरू हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग RWD के पोमा यूपिया डिवीजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले इंजीनियर्स के सड़क निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना है। इससे PMGSY सड़क परियोजना की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय ईटानगर ब्रांच द्वारा पासीघाट के IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में PM विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य कारीगरों और PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों की उद्यमिता तथा विपणन क्षमताओं को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश ने त्रिपुरा के अगरतला में गत 11 से 13 सितंबर तक आयोजित 8वीं नॉर्थ ईस्ट पेंचाक्सिला चैंपियनशिप 2026 में कुल 32 पदक हासिल किए। इनमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल है। इस उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री चौना मेन ने आज बधाई देते हुए सभी पदक विजेताओं कोच सोनम लामरा, अधिकारी और पूरी सहयोगी टीम के कठिन परिश्रम की सराहना की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियर्स में से एक मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। जिला उपायुक्त तवांग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार ऐसा देखा गया है कि गाय, बकरी, टट्टू और खच्चर आदि जैसे जानवरों को तवांग कस्बे में चारे के उद्देश्य से खुला और बिना देखरेख के छोड़ दिया जाता है, और चूंकि ऐसे आवारा जानवर बेवजह घूमते रहते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किचन गार्डन, बारों, सड़कों आदि को क्षति पहुंचाते हैं और यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, और चूंकि जन सुरक्षा के हित में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसे आवारा पालतू जानवरों को नियंत्रण में रखना अनिवार्य और आवश्यक हो गया है, अतः जिला उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट तवांग द्वारा सेक्शन 152 BNSS 2023 और सेक्शन 10 पशु अधिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए तवांग टाउनशिप और आसपास के क्षेत्रों में पालतू पशुओं को उनके मालिकों द्वारा खुला छोड़ने पर रोक लगाते हैं। इसके अतिरिक्त मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं के मालिकों को अपने पालतू पशुओं और मवेशियों को अपने अपने परिसर में तत्काल प्रभाव से बंद रखना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर BNSS 2023 की धारा 223

के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त द्वारा तवांग टाउनशिप क्षेत्र और उपनगरीय क्षेत्रों में इन आवारा पशुओं को हटाने और जब्त करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप जिला उपायुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। जरूर अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन हलेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे अनी यशी पेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवंग के 8वीं कक्षा के छात्र बुम्पा दोर्जे से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा अ मैटर ऑफ टाइम। आज शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म अनारी से चंद गीत। 7:21 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम को आमे तराने के अंतर्गत लता मंगेशकर की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 16 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना। दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत। 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामतर कल शाम 5:00 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री थुपतिन टाशी से। 5:35 पर कार्यक्रम नंगचे क्लब और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे ग्यांगोंग अनी गुनपा के अनी यीशु पेमा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत का शेष भाग। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगे सिटी म्यांगचिन। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम को आमे तराने के अंतर्गत लता मंगेशकर की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

Oh,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहां हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देश्य परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना पूरी होने पर इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किशाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। केंद्र सरकार लगभग 90% और 10% राज्य सरकारें खर्च करेंगी। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा यह 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमरीका के बीच 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास समारोह आज उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 778 अंक की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 280 अंक गिरकर 23,119 पर बंद हुआ। दिल्ली में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल तक अरब सागर में और शनिवार तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। शनिवार तक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India today termed the targeting of commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in West Asia region as completely unacceptable following the attack on a vessel off the coast of Oman. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stated

0: Deshidile, my name is Pumpadorji and I am a student of class 7 from Elite English School. Today I will be reciting a poem. The title of the poem is A Matter of Time, written by Jimmy Osborne. I hope you enjoy this recitation. Let's begin. It's easy to let it slip, but you must not lose your grip when you are grappling with the blues through the gravel and the grit. After all that you have been through, don't stress. You are only human, see. I have come to the conclusion that perfection is an illusion. I know sometimes it's tough, but don't give up. You are good enough and I can't wait to see you shine, my little diamond in the rough. When happiness is hard to find, some days you really have to mind. But I am confident you will find your way. It's only a matter of time. Thank you.
1: अभी आपने सुना एलाइड इंग्लिश स्कूल तवंग के सातवीं कक्षा के छात्र बुम्पा दोर्जे से कविता. कविता का शीर्षक था अ मैटर ऑफ टाइम. इसी के साथ कार्यक्रम पूर्णमात्रा यहीं पर समाप्त हुआ. ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है. समय शाम के 7:11 हुए हैं. श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से. इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे फिल्म अनारी से चंद गीत. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में. शब्द रचना है आनंद मिलन के. वसंगीत है आनंद मिलन का. वह शब्द रचना है समीर का.

0: श्रोताओं अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म अनारी से गीत, गीतकार थे समीर व संगीत था आनंद मिलन का। इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 7:25 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे तवांग मठ के हिंदी अध्यापक शास्त्री लोपसंग तेंगिल से परम पावन 14वीं दलाई लामा जी के 4 प्रतिबद्धताएं विषय पर वार्ता।
1: परम पावन जी के जो 4 मुख्य प्रतिबद्धताएं हैं संक्षेप रूप से हैं, उनकी पहली प्रतिबद्धता या हम संकल्प कह सकते हैं, परम पावन जी कहते हैं सर्वप्रथम मैं एक मनुष्य हूं, एक मानव हूं, एक मानव होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि समस्त मानव जगत में समस्त मानवों को समान रूपेण समान रूप से एक ही रूप से सुखमय जीवन जीने का अधिकार है और उस सुखमय जीवन का आधारभूत कहे या जड़ जो है मानवीय मूल्य जैसे कि करुणा दया आत्मानुशासन आदि।

इन सब सदगुण जो है मनुष्य के अंदर के जो हमारे अंदर निहित है, इन गुणों से मनुष्यों को अपने प्रवचन द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से परम पावन जी लोगों को अवगत कराकर इस विश्व में शांति स्थापित करना ही है परम पावन जी का पहला संकल्प या प्रतिबद्धता है। और उनकी दूसरी प्रतिबद्धता जो है, परम पावन जी कहते हैं कि दूसरे क्रम पर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं,

उनके बीच परस्पर सौहार्द भाव और विभिन्न धर्म अभिलंबियों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव का उत्पन्न कराकर इस विश्व में सर्वधर्म संभाव की जो कल्पना है इस परिकल्पना को साकार करना ही परम पावन जी का दूसरा संकल्प प्रतिबद्धता है। और उनकी ये तीसरी प्रतिबद्धता जो है, परम पावन जी कहते हैं कि तीसरे क्रम पर मैं एक तिब्बती हूँ और तिब्बतियों का एक धर्म गुरु हूँ। तिब्बती और तिब्बतियों का धर्म गुरु होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि तिब्बत की संस्कृति, तिब्बत का धर्म, तिब्बत की सभ्यताएं, तिब्बत का पर्यावरण का संरक्षण करना। और आज तिब्बती लोग जो हैं मानसिक प्रताड़न से गुजर रहा है, बौद्ध पीड़ा में है, तो उनके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को विश्व के स्तर में, विश्व के मंच में वकालत करके पूरे तिब्बतियों को न्यायपूर्वक अधिकार दिलाना पवन जी का तीसरी प्रतिबद्धता है। और उनकी चौथी प्रतिबद्धता जो है, पवन पावन जी कहते हैं कि मैं एक प्राचीन भारतीय विद्या का अनुयायी हूँ। उस दृष्टि से मेरा यह कर्तव्य बनता है जो आज भारतवर्ष से विलुप्त हो चुके, जो प्राचीन भारतीय विद्या है, जो अमूल्य है, अतुल्य है, पहले जितने प्रासंगिक थे इस विश्व के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज विश्व को उसकी जरूरत है। तो मैं इस भारतीय प्राचीन विद्या जो है उसको भारतीयों के बीच में और खासकर भारतीय युवाओं के बीच में पुनर्जीवित करके विश्व शांति का निम्न रखने का जो संकल्प है, ये परम पावन जी की चौथी प्रतिबद्धता है। और मैं समझता हूँ कि उपरोक्त जो चार प्रतिबद्धताएं हैं परम पावन जी की, ये जो है उनका हम सभी जगत वासियों की, सभी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शन है जो अभूतपूर्व है। पहले किसी ने ऐसा मार्गदर्शन नहीं किया, इतिहास में कहीं नहीं मिलता है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन, ये अभूतपूर्व मार्गदर्शन कह सकता है। तो इस तरह के महान मार्गदर्शन का हमको अध्ययन कर अपने चित्त के अंतर में उसको उत्पन्न कर अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग कर फिर अपने और दूसरों के जीवन को सार्थक जीवन बनाना चाहिए। और मैं अपने पहले विषय को यहाँ रखता हूँ, तो इसके साथ मैं अपने दूसरे विषय उसमें आऊंगा। परम पावन जी ने 2015 में धर्मशाला परम पावन जी के निजी आवास में उन्होंने हमारे ताऊ मठ के भिक्षुओं से कहा था, आज भारत में आने के बाद हम तिब्बतियों ने हर क्षेत्र में विकास करना शुरू कर दिया है और आप मौन भावों ने भी काफी विकास किया है और धर्म के क्षेत्र में भी बहुत विकास कर रहे हैं। वो वाक्य प्रशंसनीय बात है, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी बात है। और आपके मठाधीश रिंपोचे जी के साथ कुछ देर पहले जब मेरी चर्चा चल रही थी तब मैंने कहा पूरे हिमालय और तवांग में बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं, खासकर आपके तवांग मठ के शाखा के रूप में 16 या 17 की संख्या में छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं। उन सबको केवल एक छोटा सा बौद्ध मंदिर दर्शन या पूजा पाठ के केंद्र तक सीमित न रख के वहां पर उन सभी जगहों में बौद्ध धर्म के अध्यापन का केंद्र में अगर इन सब छोटे छोटे बौद्ध मंदिरों को तब्दील कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मैं फिर से आप भिक्षुओं से कहता हूं, इस विषय में आप लोगों को सोचना है। आप लोगों को आपके जितने भी शाखा के रूप में जितने भी छोटे छोटे बौद्ध मंदिर हैं वहां पर पुजारी के रूप में एक बौद्ध धर्म को जानने वाला भिक्षु को तैनात करना चाहिए और उसके माध्यम से ग्रामीण लोगों तक बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है पहुंचाना चाहिए। और जब ग्रामीण इलाके के जो ग्रामीण वासी जो है, गांव में रहने वाले जो है और वहां के विद्यार्थियों के साथ उस भिक्षु का संबंध बढ़ेगा और बौद्ध धर्म के विषय में अध्यापन करते हुए बौद्ध धर्म की दिशा में आकर ग्रामीण इलाके के लोगों के अंदर कुछ विकास होता है या बौद्ध धर्म के मौलिक शिक्षा जो है उनको प्राप्त करने के बाद आपको और एक काम करना होगा, उन लोगों

आगे मार्गदर्शन करना, बौद्ध धर्म का अध्यापन करना। तो उसके लिए मेरे द्वारा संपादित एक ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध विज्ञान तथा दर्शन सिद्धांत समुचे नाम तटकुंती। इसको पढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में बौद्ध धर्म के जो विज्ञान है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके विषय में बात की है। इसके अंदर में पारंपरिक धर्म के विषय में नहीं है, लेकिन जैसा ही लोग इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे, बौद्ध विज्ञान और बौद्ध सिद्धांत के विषय में जानेंगे, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना स्वाभाविक रूप से होंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा आप अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके अंदर में श्रद्धा जागेगी। ये मेरा अनुभव है, परम पावन जी कहता है कि ये मेरा अनुभव है, मैंने खुद इस बात को देखा है। इसलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है और इसका अनुसरण करना है, परम पावन जी ने 2015 में कहे थे। और इसके साथ आगे कहते हुए उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर के अत्यंत खुशी हुई कि आप मनपा क्षेत्र के जो जितने भी मनपा वासी हैं उनके बीच आज बौद्ध भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों ने तो उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब मैं बौद्ध भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो अपनी तिब्बती भाषा का प्रचार बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऐसा गलत नहीं, आप लोगों को नहीं लेना है। ऐसा आरोप मुझे एक आध बार लग भी चुका है। मैं बौद्ध भाषा जो है उसको पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, आज इस जगत के अंदर में हमारे आज इस दुनिया की आबादी जो है 7 अरब से भी ज्यादा है और उन लोगों के द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है हजारों है, हजार से भी ज्यादा। लेकिन बौद्ध धर्म के उल्लेख संपूर्ण रूप में उल्लेख पूरी तरह से सब शुरू से अंत तक उल्लेख जो है केवल 2 भाषाओं में मिलता है, एक बोधी भाषा एक चीनी भाषा। लेकिन चीनी भाषा जो आज बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई भी उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर बौद्ध धर्म को किसी भाषा के माध्यम से व्याख्यान कर सकते हैं तो केवल बोधी भाषा है। इसलिए अगर बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्मी लोग हो या बौद्ध धर्म को ठीक तरह से जानने की इच्छा रखते हो, उन लोगों को बोधी भाषा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं बौद्ध भाषा को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। और आगे 2014 में गंडन मठ दक्षिण भारत के हमारे महाविहार गंडन मठ में परम पावन जी ने हम मनबावासियों से कहा था 1959 में, जब मैं अपने देश को छोड़ करके अपने लोगों को चीनी दमनकारियों के हाथ में छोड़ करके भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मन दुख से भरा हुआ था। लेकिन भारत की सीमा तवांग के सरजमी में मैंने जैसा ही अपना चरण रखा, मेरी तबीयत में सुधार आने लगी और मेरे मन के बड़े बोझ जो है हट गया, मेरे मन में सुकून मिलना शुरू हो गया। तत्पश्चात भारत में आने के बाद मैंने अपना सर्वप्रथम धर्म प्रवचन जो है तवांग मठ में दिया था। उसी की स्मृति के लिए आपके अरुणाचल के सरकारी प्रतिनिधि एवं मनवासियों के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को अभिव्यक्त करता हूँ। आप लोगों को पता है छठे दलाई लामा जी का अवतरण तवांग में ही हुआ था, क्योंकि 5वें दलाई लामा के साथ तवांग वासियों का गहरा संबंध था। और आज भी जब मैं तवांग में जाता हूँ तो उड़गिलिंग गोम्पा में जरूर जाता हूँ, क्योंकि वहां पे जाने पर, वहां पे पहुंचने पर मुझे एक विशेष शक्र का अपनापन का महसूस होता है। इस दृष्टि से हम और आपके बीच बहुत ही गहरा संबंध है और हम लोगों की संस्कृति धर्म परंपराएं सभ्यता एक ही है। इस दृष्टि से धर्म संस्कृति का संरक्षण करना संवर्धन करना हम सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, ये दायित्व बनता है हम लोगों का, हम सब लोगों को मिलकर के इसका संरक्षण करना, इसके लिए आप लोगों को जरूर जोर लगाना चाहिए। और पहले तिब्बत में भी आज भारत में भी हमारे जितने भी तिब्बती मठ हैं वहां पर आपके मनबा सन्यासी विद्यार्थी जो है अध्ययनरत है, काफी गहराई से पढ़ाई कर

अच्छी बात है, आप उन बाबासियों को इस दिशा में सोचते हुए और भी बच्चों को भेजते रहना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो है हमारे तिब्बती विद्यालयों में भी आए, क्योंकि उन तिब्बती स्कूलों में, उन तिब्बती विद्यालयों में बौद्ध धर्म, बौद्ध भाषा के साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी आदि आधुनिक शिक्षाओं को भी पढ़ाया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लाभ जो है आपके बच्चों को भी मिले। वैसे भी आज विश्व की मांग है कि हम लोगों को अपने प्राचीन सांस्कृतिक विद्याओं के साथ में आधुनिक शिक्षाओं को भी बाखूबी जानना, ये आज की मांग है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने बच्चे जो है हमारे विद्यालयों में भी भेजें। और 2017 में दवांग मठ की इस विशाल कक्ष के अंदर में परम पावन जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन उपदेश दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आज रास्ते से आते हुए रास्ते के आसपास मुझे बहुत सारे छोटे छोटे बौद्ध मंदिर जो हैं और देवों की मूर्ति का निर्माण जगह जगह पर देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, ये बौद्ध धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और आपके जिला के जो विकास के मार्ग पर है इसका द्योतक है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ, हम लोगों को बौद्ध मंदिर जो है बाहर नहीं बनाना है, अपने मन के अंदर में बनाना है। और देव मूर्तियां जो है बाहर नहीं, मन रूपी देवालय के अंदर में स्थापित करना चाहिए। जब हम मूर्तियों के, भगवान बुद्ध की या अपने मन में, अपने हृदय में अवलोकितेश्वर की मूर्ति की स्थापना कर और बुद्धि में मंजूश्री की स्थापना करेंगे, तब जा करके आपके जीवन सार्थक होंगे, दूसरों के जीवन सार्थक होगा। और इसी से ही पूरे विश्व भर में सुख शांति अमन चैन की स्थापना होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अपने मन के अंदर में बौद्ध विहार को स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ जोड़ते हुए और एक बात कही थी जिसको मैं यहाँ पे कह देना उचित समझता हूँ। परम पावन जी ने यह कहा, हाल ही में एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था, सैलापार करके जब आ रहे थे परम पावन जी, तो उन्होंने बहुत सारे याक्स को देखा है वहाँ पे। तो उन यागों को देखते हुए उनके मन में एक खुशी मिली, क्योंकि ये तिब्बत का एक विशेष प्रकार का जीव है। लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद परम पावन जी कहते हैं कि मेरे मन में एक परेशानी उठी, मेरा मन परेशान होने लगा, क्योंकि इन सब यागों को जो है लोग हत्या कर देंगे, तब क्या होगा। ये सोच करके परम पावन जी का मन जो है विचलित हो गया। और आगे कहते हैं कि यहाँ टाउन में पहुंचने के बाद ये बात जानकर के बड़ा सुकून मिला मन को, कि इन बेजुबान जानवरों की रक्षा के लिए, रखवाले के लिए एक संगठन है जो जीव हत्या को रोकने का काम करता है। पवन पावन जी ने ऐसा कहा था। और जब उनका लौटने का समय आया, तब उन्होंने कहा था, जो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, उन्होंने कहा था कि आपके मुख्यमंत्री जी ने मुझे वापस टाउन में आने के लिए न्योता दिया है, आमंत्रित किया है, मैं जरूर आऊंगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि काल चक्र का अभिषेक अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगा। तब परम पावन जी ने कहा कि मुझे लगता है कि काल चक्र से बेहतर अगर हम बोधिचर्य अवतार के प्रवचन कर पाएंगे तो ठीक रहेंगे, इस विषय में मैं जरूर सोचूंगा, मैं बिल्कुल वापस लौट करके टाउन में आऊंगा। तो हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि परम पावन जी स्वस्थ रहे और बारंबार ताऊ में पधारते रहे और उनके अमृत रूपी वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होते रहे। और मैं अपने बात को संजय बनाते हुए अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। उपर्युक्त जितनी भी बात मैंने यहाँ रखा है उसका संजय रूप मेरा अपना दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण छोटा है तो हो सकता है कि वहां तक ना पहुंचे, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण को रखना चाहता हूँ। परम पावन जी के जो अभी बात जो मैंने रखा उसका सार अगर बताएंगे तो परम पावन जी कहते हैं, हम तवांग वासी जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, इसीलिए बौद्ध धर्म का संरक्षण संवर्धन करना हम लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। और बौद्ध धर्म का संरक्षण या उसका संवर्धन करने के लिए बौद्ध धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के बौद्ध धर्म का न संरक्षण होगा न उसका संवर्धन होने का संभव है। और बौद्ध धर्म को अमूल जानने के लिए बौद्ध भाषा की आवश्यकता है,
इसलिए आप लोगों को बहुत

0: भाषा का उचित ज्ञान भी होना है। बौद्ध भाषा को जानते हुए बौद्ध धर्म को आप अमूलचूल समझेंगे, अपने अंदर में समावेश करेंगे, फिर बौद्ध धर्म को जान लेना पर्याप्त नहीं है। बौद्ध धर्म का भावना करना, उसका ध्यान करना, उसका अभ्यास करना जरूरी होता है। तो बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हुए जब हमारे अंदर में करुणा भाव जागेगा और हमारा जीवन करुणामय होगा और दूसरों के लिए हम काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान करेंगे, और इससे ही विश्व शांति की स्थापना होगा। और यही दलाई लामा का उद्देश्य है और दलाई लामा का मार्गदर्शन मैं समझता हूँ। और अभी हाल ही में जो एक वीडियो आ रहा है दलाई लामा जी का संदेश है, परम पावन जी कहते हैं कि मेरा जो अवतरण दिवस है, इस अवसर पर आप सब लोग जो है मुझे अपनी ओर से कुछ ना कुछ तोहफा या बैंड देने की इच्छा रखती होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा या बैंड यह होगा कि अगर आप अपने मन में सद्भावना को जगाते हुए, अपने जीवन को करुणामय बनाते हुए लोगों की यथासंभव मदद करेंगे, अगर मदद की संभावना ना हो तो कम से कम लोगों को परेशान न करना। अगर मेरी इस बात को आप अपने मन में रख करके अपने दैविक जीवन में उतार करके उसका पालन करेंगे तो मेरे लिए आपकी ओर से सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो इसलिए मैं इस बात को कहते हुए कि जो परम पावन जी का उद्देश्य जो है हर मनुष्य के अंदर में सद्भावना को जगाना, हमारे जीवन को करुणामय बनाना, इस विश्व को शांतिपूर्ण विश्व बनाना, इस उद्देश्य में हम सब लोगों को सहायक बन करके यथासंभव अपनी ओर से कोशिश करना चाहिए। और अंत में परम पावन जी के दीर्घ आयु अथवा उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति है तो मैं त्रिरत्न से प्रार्थना करते हुए अपना वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तवंग मठ के हिंदी अध्यापक शास्त्री लोबसंग तेंगिल से परम पावन चौदहवीं दलाई लामा जी के चार प्रतिबद्धाएं विषय पर वार्ता। इसके साथ आज का कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार और 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच हुई बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चिंताओं का उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की मूलभूत चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में तीन परस्पर सिद्धांतों, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता को मार्गदर्शन में शामिल किया जाना चाहिए।

0: राज्य में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित करना है। राज्यपाल ने प्रतिभागियों से बातचीत कर उनके आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता तथा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। शिक्षा एवं ग्रामीण कार्य मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि इंजीनियर अपने ज्ञान, नवाचार, तकनीकी विशेषज्ञता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और देश की प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज ईटानगर स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित 59वें इंजीनियर्स डे समारोह 2026 में शामिल होते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने संपूर्ण इंजीनियरिंग भागीदारी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी प्रगति तथा राष्ट्र निर्माण में इंजीनियर्स के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत चलाए जा रहे निरंतर बाल सुरक्षा जागरूकता अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला दर्शाता है कि स्कूलों में बच्चों की दी जाने वाली जागरूकता उन्हें दुर्व्यवहार की स्थिति में मदद मांगने के लिए सशक्त बना सकती है। मौजूदा मामले में आरोप है कि एक पड़ोसी ने मिठाई देने के बहाने पीड़ित बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ कथित अपराध किया गया। पीड़ित बच्ची के चचेरे भाई, जो स्वयं भी स्कूल में ही पढ़ता है, उसने बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 यानी 1098 के माध्यम से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चाइल्ड लाइन से संदेश प्राप्त होने पर महिला पुलिस की टीम लेड इंस्पेक्टर आमोम पानियांग के नेतृत्व में तत्काल कार्रवाई में जुटकर एक घंटे के भीतर ही आरोप को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस बीच ईस्ट सियांग पुलिस ने अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय से सतर्क रहने, बच्चों की बात बिना टोके सुनने तथा जब भी कोई बच्चा परेशानी में दिखाई दे तो तुरंत उचित सहायता लेने की अपील की है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में आज 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह में हिंदी को संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण की भाषा के रूप में और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ये कार्यक्रम हिंदी विभाग जेएनसी पासीघाट द्वारा भारतीय भाषा मंच ईस्ट सियांग इकाई के सहयोग से आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अधिक रुचि विकसित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान कविता पाठ, निबंध लेखन और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश ने अगरतला में गत 11 से 13 सितंबर तक आयोजित 8वीं नॉर्थ ईस्ट पेंचाक सिलाट चैंपियनशिप 2026 में कुल 32 पदक हासिल की है। इनमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने आज बधाई दी है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं, कोच सोनम लामरा, अधिकारियों और पूरी सहयोगी टीम के कठिन परिश्रम की सराहना की। पर्वतारोही जानवारी ताली एक ही पर्वतारोहण सत्र में 7,077 मीटर ऊंची माउंट कुन और 7,135 मीटर ऊंची माउंट नून दोनों चोटियों को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। जानवारी ताली ने गत 8 सितंबर को लद्दाख में माउंट नून पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। इससे पहले उन्होंने 27 जुलाई को माउंट कुन पर चढ़ाई पूरी की थी। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के पापुमपारे एवं दिबांग वैली जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar, the news read by Nara Koya. Ministry of External Affairs has said that several issues came during the discussion between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping during the meeting on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that during the meeting, Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. He added that the concerns should be guided by the three mutuals, which are mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity. As part of

0: लता मंगेशकर की आवाज में इसी देश भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम कौमी तरानी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई बेस पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे बप्पी लहरी की आवाज में फिल्म आपकी खातिर से। शब्द रचना है शैलेंद्र की व संगीत है बप्पी लहरी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है नालेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नवकर निर्मला नवकर और विशाल नवकर और मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले सोपन तैरे और आशीष मुरेकर।

राठौर और सोनू निगम की आवाज में, शब्द रचना है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत की हमें फरमाइश की है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चाईबासा झारखंड से आप है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आनंद बख्शी द्वारा शब्द फिल्म दिल तो पागल है से। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है उत्तम सिंह ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है ततरंगी बाता बारा छत्तीसगढ़ से। आप हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौकेलाल वर्मा।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म छाया से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण के, वह संगीत है सलील चौधरी का। इस गीत की हमने फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से आवे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, और असम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे केसी वर्मा द्वारा शब्द फिल्म बॉम ब्लास्ट से गीत, शब्द मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है बप्पी लहरे ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है मधुवन कॉलोनी तवांग से। अब है राहुल संगीत सिंह और गुरु

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुबह की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। ब्रेंडल टेनर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मिजोरम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की समीक्षा की। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केनिया को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।

0: अगर मुकाबले की बात करें तो भारत का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके अफगानिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर रखा है। अफगानिस्तान ने 13.5 गेंदों में 97 रन पर 5 विकेट गवा दिए हैं और अभी दारविश रसूली और मोहम्मद नबी क्रीज पर मौजूद हैं।
1: 97 रन पर 5 विकेट अफगानिस्तान के हो गया। और किन बल्लेबाजों ने कैसा किया है प्रदर्शन अफगानिस्तान का आज के मुकाबले में विशेष?
0: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करी लेकिन अपने स्टार्ट को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। उन्होंने 33 गेंदों पर 37 रन बनाए जिसमें 6 चौके शामिल थे। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज शून्य पर आउट हो गए और सिद्दीकुल्लाह अटल 12 ही रन बना सके। उसके बाद गुलबदीन नाइब भी 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजमतुल्लाह उमर जाई जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था वो भी इस मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके।
1: और अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, आज कैसा रहा है भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक?
0: प्रशांत, जसप्रीत बुमराह की जो कसी हुई गेंदबाजी है उसका रिवॉर्ड मिला है अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सभी को। बुमराह ने 2 ओवर में 1 मेडन डाला है और 9 रन दिए हैं। केवल 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है और अक्षर पटेल अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। रवि बिश्नोई ने भी आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है जिन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम की काफी सारी उम्मीदों को आगे लेकर जाते हुए 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए।
1: कई खिलाड़ियों की वापसी हुई और श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 100 रन बना लिए। और विशेष अगर भारतीय टीम की बात की जाए, इस श्रृंखला से वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण बाहर हो गए। कितना चिंताजनक है ये खबर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से?
0: जाहिर तौर पर प्रशांत ये खबर भारतीय प्रशंसकों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि चोट के बाद जब वरुण ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में वापसी की थी तो दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 ओवर में महज 4 की इकोनॉमी रेट से 16 रन देकर 1 विकेट लिया था। और प्रशांत मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में भी वरुण के खेलने पर अभी संशय बना हुआ है।
1: अब चलते हैं सीधे जिम्बाब्वे के हरारे में जहां जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बनाए। मैट रनशो ने सर्वाधिक 109 रन की शतकीय पारी खेली। कूपर कॉनली ने 51 रन का अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। 3 मैचों के श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 सितंबर और तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। विशेष पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत ही रोमांचक मोड पर है और क्या हाल है इस वक्त मुकाबले का?
0: प्रशांत, अभी जिम्बाब्वे जो है उनको जीत के लिए 51 गेंदों पर 80 रन की जरूरत है। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आई थी उनकी टीम तो ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। 107 रन पर 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे लेकिन मैट रेनशॉ ने अपनी शानदार शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और साथ ही साथ उनको 294 रन के बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम योगदान दिया। उनका साथ निभाया ओलिवर पीक ने और एलेक्स कैरी ने जिन्होंने अहम साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर बात करें अभी हम जिम्बाब्वे की तो वहां उनके जो मुख्य खिलाड़ी रहे उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान सिकंदर रजा ने 76 गेंदों पर 57 रन बनाए। वो चाहते तो एक बड़ी पारी खेलने की और कोशिश कर सकते थे और जिम्बाब्वे को एक अच्छी स्थिति में ले जा सकते थे लेकिन अभी ब्रेड इवांस और वेलिंगटन मसगाडजा क्रीज पर मौजूद है और एक तरह से औपचारिकता ही बची है इस मुकाबले में।
1: जी,
0: ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से हावी है।
1: विशेष आज के मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने हैं, सचिन का भी रिकॉर्ड टूटा है।
0: जी बिल्कुल प्रशांत, आज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर के सबसे लंबे वनडे करियर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है।
1: जी,
0: टेलर ने 2004 में डेब्यू किया था और उनका वनडे करियर अब तक 22 साल 146 दिन का हो गया है।
1: जी,
0: सचिन का जो करियर रहा वो 22 साल और 91 दिन का था। टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में से भी एक है। अपने वनडे करियर में टेलर 205 पारियों में 6704 रन बना चुके हैं। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं जिन्होंने सर्वाधिक 6786 रन बनाए हैं।
1: और विशेष मुकाबले में और कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ आज?
0: एक यूनिक रिकॉर्ड बना है प्रशांत। आज मैट रेनशॉ ने आज जो है अपने करियर का पहला वनडे शतक तो लगाया ही, साथ ही साथ जिम्बाब्वे की धरती पर ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं और इसके साथ ही वे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
1: अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस ओर रुख लेता है। अहमदाबाद पहली बार कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। आयोजन भारत में होने जा रहा है जिसके दूसरे संस्करण के लिए

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। क्या मौजूदा स्थिति है इस मुकाबले की विशेष?

0: 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस प्रतियोगिता में इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10 बॉल पूल, हे बॉल और ब्लैक बॉल जैसे लगभग 46 कॉमनवेल्थ देशों के क्यू खिलाड़ी एक साथ आएंगे। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के समर्थन से आयोजित यह टूर्नामेंट BSFI के 100 साल पूरे होने के समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। 2025 में मॉरिशस में पहले संस्करण में 5 मेडल जीतने के बाद भारत कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियनशिप में उतरेगा, जिसमें विमेन्स हेबॉल में विद्या पिल्लई का गोल्ड और मेन्स हेबॉल में शिवम अरोड़ा और विमेन्स 10 बॉल पूल में चित्रा मगी माई राज के सिल्वर मेडल शामिल हैं। तीनों मेडलिस्ट को इस साल की चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिली है। भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीदों में से एक विद्या पिल्लई है, जो मौजूदा कॉमनवेल्थ विमेन्स हेबॉल चैंपियन है, जिन्होंने पिछले साल मॉरिशस में साउथ अफ्रीका की मरीना जैकब्स पर एक शानदार शूटआउट में जीत हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम में जाने माने इंटरनेशनल परफॉर्मर और उभरते हुए टैलेंट का भी अच्छा मिश्रण है। महिलाओं के दल में मौजूदा IBSF महिला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन, रेवन्ना उमा देवी के साथ भारत के इंग्लिश बिलियर्ड्स चुनौती का नेतृत्व करेंगी, जबकि 2026 एशियाई महिला स्नूकर चैंपियन कीर्तना पांड्यान, श्रुति लक्ष्मी नारायणन और इशिका शाह के साथ स्नूकर में देश के अभियान का नेतृत्व करेंगी। पुरुषों की टीम में सिद्धार्थ पारेख, लक्ष्मण रावत और संदीप गुलाटी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही युवा टैलेंट रियान रजमी और पारस गुप्ता भी हैं। चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के 10 मेडल सेट होंगे, जिनमें बिलियर्ड्स इस साल कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रोग्राम में पहली बार शामिल होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आइजोल के अपने दौरे के दौरान मिजोरम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, एथलीटों को सपोर्ट करने और नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ज्यादा मौके बनाने पर बल दिया।
2: We need to develop sports infrastructure as well as our youth also, because our youth is the future of the India and for Vikasit Bharat. So from central government and always our prime minister are trying to build youth for nation building.
0: ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें देश में मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के ज्यादा मौके देने की बात कही गई थी। रक्षा खडसे ने आइजोल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का भी दौरा किया और एथलीटों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ से बातचीत की। एथलीटों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी ट्रेनिंग, प्रतिस्पर्धी अनुभवों और उम्मीदों के बारे में सुना और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनके समर्पण की सराहना की। और अब बात करते हैं एथलेटिक्स पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केन्या के नैरोबी को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। वहीं जर्मनी के म्यूनिक शहर को 2031 संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला बुडापेस्ट में हुई 242वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी ने रोम, म्यूनिक और लंदन जैसी मजबूत दावेदारियों को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। अफ्रीकी देश पहले भी कई मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्ट करते रहे हैं। युगांडा के कंपाला ने 2017 में वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होस्ट की थी। इससे पहले नैरोबी ने उसी साल वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। बोत्सवाना के गेबोरोन ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिलीज की मेजबानी की थी, जो अफ्रीका में होने वाला उस इवेंट का पहला एडिशन था। हालांकि ये पहली बार होगा जब ओलंपिक के बाद एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसी अफ्रीकी देश में होगा। केन्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे सफल देश है। जर्मनी 2031 में तीसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अगला संस्करण 10 से 19 सितंबर 2027 तक पेइचिंग में आयोजित होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में भारत की मेजबानी में हुई थी। इस वर्ष एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आयोजन जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम जापान में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार

0: आइए जानते हैं एशियन गेम्स में कैसा रहा है भारत का सफर, किस खेल और खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक पदक रहे हैं।
1: 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के सभी 45 सदस्य देश नियमित तौर पर एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित टीमें भी होती हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एशियन गेम्स के हर संस्करण का हिस्सा रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भारत ने 1951 में आयोजित पहले एशियन गेम्स में 15 16 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 51 पदक जीते थे। वहीं हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने 28 स्वर्ण 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 106 पदक जीते और चौथी सफल टीम रही थी। हांगझोउ एशियन गेम्स भारत के लिए अब तक के सबसे सफल खेल रहे हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 स्वर्ण 238 रजत और 357 कांस्य सहित कुल 778 पदक जीते हैं। भारत को एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण 102 रजत और 96 कांस्य सहित भारत ने कुल 283 पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत को निशानेबाजी में 80, कुश्ती में 65 और मुक्केबाजी में 61 पदक मिले हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की सबसे सफल एथलीट PT उषा रही है। PT उषा ने 4 स्वर्ण और 7 रजत सहित कुल 11 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और ईरान चौथे स्थान पर है। चीन ने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य सहित 3570 पदक जीते हैं। जापान ने 1084 स्वर्ण, 1104 रजत और 1054 कांस्य पदक सहित कुल 3242 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय दल हांगझोउ एशियन गेम्स के सर्वाधिक 106 पदकों के रिकॉर्ड को भी और बेहतर करने की कोशिश करेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बना लिए। मोहम्मद नबी 14 और राशिद खान 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है और इस वक्त जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर भारत के लिए लेके आए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक

0: के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं, और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000

0: रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉ सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री

0: ने जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपये से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed